0: देखो
1: खेतों खेतों डगमग डोले हरियाली मतवारी हो हरियाली मतवारी
2: खेतों खेतों डगमग डोले हरियाली मतवारी हो हरियाली मतवारी
1: ऐसे में